अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ते आई, सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला। अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ते आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे, गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कारयोग सत्संगी जन, वडभागिया जिथे आप जिया ने संध्या समय में मुख रखते हैं। सोधा रहिरा साहब जी की पावन बाणी के पाठ श्रवण किए ने। सरबादे पले की अरदास तो उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगता ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित श्रवण किए हैं। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन का। सेवा निभाउण गए भाई हरजीत सिंह चमक दिल्ली वाले, औतना पासों पावन बाणी के शब्द कीर्तन श्रवण करिए जी। भुला चुकां दी खिमा, आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते अहिं सच जो मर जमै सो कचन कच महला पहला।
1: वड्डी वड्याई जां वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जां सच ने आओ वड्डी वड्याई जां नहीं चलथाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बूझे सभाओ वड्डी वड्याई जां पुछ न दात वड्डी वड्याई जां पियाप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा। एहो जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विच वास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना भाणै कढ ले इक ना माया विच निवास एव भे आख ना जा पई जे किसे अणै रास।

कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ वैसनहार, कूड़ सोइना, कूड़ रूपा, कूड़ पैननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूबा पार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार।

0: नाहे जले न जाए। तन सुमन स्नान कर जुगल चले पाई, चौकड़ मूल अनाया बह चौके पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया, ऊ मुआ ऊ चढ़ पिया वेता गा गया महला पहला।
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पहना मियां, रात दिन सजी नाल तग कपाहो कतिए, बमण वटे आए।

पौड़ी तुरे पुराने पौन वेग हरंगी हरम सवार या कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कृपा सारे या चीज कर्मन पाव दे हर बुजन नाही हारिया कर फरमाय सिखाया वेख मैल तुमन विसारिया।

आपे ही करना कियो कले आपे ही ते तारिया देखै कीता अपना अंदर कच्ची पक्की सारिया जो आया सो चल सी सब कोई आई वारिया जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मन बिसारिया।

पौड़ी नाल कतन जपनी हरता के पारावार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मारिक नगली जंजीरी अंतरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसो करी पुकार नानक न जिनकिया।

प्यास लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे दर्शन प्यासी दिन सरात चितों अन दिन नीत। महाराज ने कहा खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संघ मीत। कपट का अर्थ है कपाट जिन्हों आप कवाड़ कहने जिमें व्डे दरवाजे होंगे सी राजा महाराजा के महलों के उन्होंने कवाड़ कहा जाता सी कवाड़ खुलते हैं। अज भी तुसी ना जदों हरिमंदर साहब दरबार साहब जाते हो तो कवाड़ लगते हैं उत्थे कवाड़ खुलते हैं कोई उदा टाइम है तो आप अगे जा के दरबार साहब के दर्शन करते हैं उत्थे। इस तरीके एक कवाड़ है जेडे मेरे शरीर रूपी हरिमंदर के उत्ते लगे हुए हैं। हुण जे कवाड़ बंद ही रहने तो दर्शन की करोगे? महाराज बाणी में कहते ना हरिमंदर ये शरीर है, हुण शरीर हरिमंदर है, ये कवाड़ लगे ने। कवाड़ खुलन गए तो अंदर बैठा हरी रब वाहिगुरु नजर आएगा। कवाड़ लगे ने माया के मोह दे। महाराज अरदास करदा भी ये जेडे कवाड़ ने यह खुल जाण। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संघ मीत। जदों वो हरी संघ करा दिता गुरु मित्र ने तो अंदर के जेडे कपाट सन वह खुल गए, अंदर के कवाड़ जेडे सन खुल गए। ये दरवाजा अंदर ही लाया बंदे ने, यह लॉक अंदर ही लगा है। अगे महाराज शंत उचारण करते हैं, उन्होंने आख्या सुन यार हमारे सज्जन। सज्जन कौन है? गुरु। यार कौन है? गुरु। सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतिया। मैं एक बेनती कर दें, एक जोदड़ी कर दें, बेनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर भावै, जे तेनों पाउंदा मेरे ठाकुर। सवैया में आख्या बिनत करदा, बेनती करदा, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। महाराज कैड़ी अरदास करनी? आख्या दे दर्श मन चाओ भगत ए मन ठहरावै। मैनू अपने दर्शन दे, मेरे मन में चाह है तेरी भगती नाल मेरा मन ठहर जावे, ये मेरी तेरे अगे अरदास है। बिनत करो अरदास सुनो, मैं तो बेनती कर सकता, सुननी तू है। जे ठाकुर भावे, जे तेनू कितें मेरी ये बेनती चंगी लग जावे, तेनू भा जावे, जां मैं ठाकुर नू भा जावां। देहो दर्श मन चाओ, मैनू दर्शन दे, मेरे मन विच चाओ है, खेड़ा आया है, उत्साह है। महाराज कहिंदे भगत तेरी भगती नाल ये जिहड़ा मेरा मन है ये ठहर जावे, ये तेरे अगे अरदास है। सतगुरु ने बख्शिश कीती। सुन यार हमारे सज्जण एक करूं बेनंतिया। बेनती करना एक मैं तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरूं खोजंतिया। उस मोहन उस लाल प्यारे नू मैं खोजती फिरदी, रब नू लभदी फिरदी। तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरों खोजंतिया। तिस दस प्यारे उस रब दा मैनू कोई राह दसे, कोई गवाचा है उन्हूं लभना है। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे। मैं अपना सिर उतार के धर दिया, जिवें इन्नी तलब होवे कि मैं अपना आपा वार दिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजै। जे रता भारी उदा दर्शन मिल जावे, रता भारी, क्योंकि रता भर दर्शन नहीं खेड होर दी होर बना देनी है। कई रहा कहने फलाने बंदे नाल एक रहा मिलाप हो जाए, एक रहा उन्हों मैं मिल के अपनी गल कह दिया, ये ते रब है खुदा है। एक भोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रे रंग रंगारे। एक तिल पीना तीरी जै, मेरे नैण उन्हों वेखण नू तरसदे ने, उहदे रंग विच रंगे पै ने। एक तिल जिन्ने समय ले भी हुण धीरज नहीं फड़ रहा, मेरा मन टका विच नहीं आ रहा, उहदा मिलाप चुणा। महाराज कहिंदे ने प्रभ स्यों मन लीना, मेरा उहदे नाल मन लीन हो जावे ते अंदर तड़फे नहीं है। ज्यों जल मीना, जिवें जल तो बिना मच्छी नहीं ना रह सकदी, इदा ही मैं भी नहीं रह सकता। ज्यों जल मीना चात्रिक जिमें तिसंतिया। जिमें चात्रिक बबिया, जिमें वह तरसदा है ना, इदा मैं भी तरस रहा। जन नानक गुरपुरा पाया,

हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम्हें अपनो बिरद रखाबो। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखनहार दयाला। नानक घर के गोले वाहिगुरु जी गौड़ी कबीर जी, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा।

सिमरंतु संत सर्वत्र रमनं नानक अगनासन जगदीश्वर है पीखन सुनन सुनावन मन मह दृढ़ साच पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज पौड़ी हर वेक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समरत प्रभु जो करे सो होई खिन मह था पिउ थाप तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सुब जसी निर्मल जन सोई जिस आप बुझाए सो बुझ सी निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

निष्णान बल बुद्ध सुध प्राण सर्वस संतना की रास बिसल नाही निमख मनते नानक की अरदास। मारू महला पंजवा।

तरहाउ चरण तले उगाहे बैसियो शर्म ना रहो शरीर महासागर नहा व्यापै खिने उतारियो तीर चंदन अगर कपूर लेपना ते संगे नहीं प्रीत बिष्टा मूत्र खोद तेल तेल मन ना मनी बपरीत ऊच नीच मिकार सुकृत सलंगन सब सुख शतर मित्र सतल ना कछु जाने सर्वजी समत कर प्रगास प्रचंड प्रगटियो अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन ना पेहू बिखाद शीत मंद सुगंध चलियो सर्वथान समान जहां सह के छितहां लागियो तिल न सका मान सुभाए उभाए जो निकट आवै शीत ताका जाए आप पर का कछु न जाने सदा सहज सुभाए।

बेराई है, जिस बख्शे तिस दे बढ़ियाई, सबसे दाता तिल न तुमाई, भरपूर धार रहा न केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है, क्या सा लाही अगामे पारे, साचे सृजन हार मुरारे, जिस नौ नदर करे तिस मेले, मेल मिले मैलाई है, ब्रह्मा बिशन महेश द्वारे, उभ शिव अलख पारे, होर कीती दर दिशे बिल लादी, मैं गणत न आवे काई हे, साची कीर्त साची बाणी, होर ना दिशे बेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावा, मैं तर ओर न काई हे, जुग जुग साचा है पी होसी, कौन ना मुआ कौन ना मरसी, नानक नीच कह बैनंती, दर देखो लिवलाई हे, मारू महला पहला, दूजी दुरमत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज ना जाने शोहर, बिन पर नींद ना पाई हे, अंतर अगन जले पड़कारे, मन मुख तके कुंडा चारे, बिन सतगुरु सेवे क्यों सुख पाई, साचे हाथ मडाई हे, काम क्रोध हंकार नवारे, तस्कर पंच शब्द संघारे, ज्ञान खड़ग लै मन स्यों लुजै, मनसा मने समाई हे, मां की रक्त पिता बिदधारा, मूर्त सूरत कर अपारा, जोत दात

रहाओ, झूठा जग डह के घना, दिन धोए बर्तन की आस, राम उदक जय जन पिया, ते बहुर न पही प्यास, गुर प्रसाद जय पूजिया, आसा ते भया निरास, सब सच नजरी आया, जो आत्म पिया उदास, राम नाम रस चाखिया, हर नामा हर तार, कौ कबीर कंचन पया, प्रम गया समुन्द्रे पार, उदक समुन्द्र सगल की, साख्या नदी तरंग समावेंगे, सुनने सुन मिले असमंदर सी, पवन रूप हो जावेंगे, बौर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसे का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ, जब चूके पंच धात की रचना, ऐसे भरम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पहे समंदर सी, एको नाम ते आवेंगे, जित हम लाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जो अपनी, तो गुर के शब्द समावेंगे, जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुनर्प जन्म न होई, कौ कबीर जो नाम समाने, सुन रया लिव सोई, जो तुम मैं को दूर कर दो हो, तो तुम मुक्त बताओ, एक अनेक हो हे रहो, सगल में अब कैसे परमाओ, राम मोको तार कहाँ ले जई है, शुद्ध मुक्त कहाँ दो कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है, रहाओ, तारन तरन तब है लग कहिए, जब लग तत् न जानिया, अब तो बिमल पहे कर ही मैं, कह कबीर मन मानिया, जिन गढ़ कोट किए कंचन के, छोड़ गया सो रावण, रहाओ, काल काल पसम का कीना, ए परपंच बधावना, जिन गढ़ कोट किए कंचन ते, छोड़ गया सो रावण, काहे की जित है मन पावन, जब जम आए के इस्ते पकड़े, तै हर को नाम छावन राव, काल काल पसम का कीना, ए पर पंच बंधावन, कह कबीर ते अंते मुक्ते, जन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो धर मौतो, बसे पंच किरसाना, नैनू नकटू सरवन रसपत, इंद्री गया न माना, बाबा अब न बसोए गाहूं, करी करी का लेखा मांगे, काहे चेतो नाओ रहाओ, धर्म रहे जब लेखा मांगे, बाकी निकसी पारी, पंच कृष्णावा भाग गए, लै बाध्यो जो दरबारी, कहे कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को, बहुर न पाव जल फेरा, राग मारू बाणी कबीर जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनपो के ने न देखे आबे रागड़िए, बिन पै अनपोहे बवना हम्बे, सौ हजूर देखे ता पो पवे बैरागड़िए, हुक्मे बूझे ता निरपो होए बना हम्बे, हर पखंड न कीजे बैरागड़े, पखंड रता सब लोक बना हम्बे, तुसना पास न छोड़े ही बैरागड़े, ममता जालिया पिंड बना हम्बे, चिंता जाल तन जालिया बैराग यड़े, जे मन मृतक होए बना हम्बे, सतगुर बिन बैराग न हो भी बैराग यड़े, जे लोचे सब कोई बना हम्बे, कर्म होए सतगुर मिले बैराग यड़े, सही जे पावे सोए बना हम्बे, कहाँ कहो कबीर एक बिनती बैराग यड़े, वो को पौजल पार उतार बना हम्बे, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओ गरीब मोहे पावे राओ, हस्ती देख परम ते भूला, श्री भगवान न जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं जमानिया, खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बेहानी, कबीर कोठाकर आनंद बनोदी, जात न काहू मानी, श्लोक कबीर, गगन जमामा बाजियो, परयो निशाने काओ, खेत जुमांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिए, जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाडे खेत, कबीर का शब्द, राग मारू बाणी नाम देव जीव की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चार मुक्त चारे सिद्ध मिलके, दूलो प्रभ की शरण परयो, मुक्त पयो चो हूं जुग जान्यो, जस कीरत माथे शतर तरयो, राजा राम जोत को ना तरयो, गुरु उपदेश साध की संगत,
भगत भगत ताको नाम परयो रहाओ। शंख चकर माला तिलक बिराजत, देख प्रताप जम डरियो। निरपो पहे राम बल गर्जत, जन्म मरण संताप हिरियो। अम्बरीक को दियो अभयपत, राज भीखन अधिक करियो। नौ निध ठाकर दही सुदामे, त्रु अटल अजहू ना टरियो। भगत हेत मारियो हर नाखस, नरसिंह रूप होए दे तरियो। नामा कहे भगत बस केसव, अजहू बल के द्वार खरो। मारू कबीर जियो दीन बसारियो रे दीवाने, तीन बसारियो रे पेट परयो पशु आजो सोयो। मनुख जन्म है हारियो रहाओ, साध संगत कबू नहीं कीनी। रचियो धंधे झूठ, स्वान सुकर बायस जमें, भटकत चालियो ऊठ। आपस को दीर्घ कर जाने, औरन को लग महत। मनसा बाचा कर्म ना, मैं देखे दो जग जात। कामी क्रोधी चातुरी, बाजी गर्भे काम। निंदा करते जन्म सरानो,

दिन करके की ती रात। खसम विसारें ते कमजात, नानक नावें बासनात। राग गुजरी महला चौथा।

सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रकाश। मेरे मीत गुरुदेव मुख और राम नाम प्रकाश, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृपता सें, मिल संगत गुण प्रकाश। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रकाश। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित्त में उदम, जाया हर हर जीव प्रया। सैल पत्थर मैं जंति उपाए, ता कारजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुरप्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय ना किस की तारिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौकरिया। उडे उडे आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। सब निधान दास वष्ट सिधान, ठाकुर करतल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख। एक ओहकार सत गुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम्मा अगम अपारा। सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा।